0: इस दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഹോം 92.2 FM. ഹോം ഇസ് എ ഫീലിംഗ്.

0: FM. Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: धान धाधीना कत धाधीना धान धीना धीना कत्ते लेके धाधीना त्रकदे घिना धा धा घिना धिन धिन धिना ना धिन धिना त्रकदे ते लेके धा धा धिना कत धा धा धिना त्रिकर्धा त्रिकर्धी त्रिकर्धा धा धा धिना त्रिकर्धा त्रिकर्धी त्रिकर्धा ताकि धा के धिना के ना धाकि धा के